टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदास नम से हत्यावत असुवत दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता व समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतर टोगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करना अमरणीय हाँ डाक

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्या असुव दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैल्य सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरीति गुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सातुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक करण अमरणीय हंडाक